समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के नया खिए जे लिखे वरते सोए महला।

0: हर पल तेरे हर आनंद वधाई तुद कर माण महाता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दास अरदास
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक्र चिहन अर वरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सह सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कह तो सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत जब लो नहीं भाग लिला रोदय तब लो भ्रमती फिरती बहतायो कल कोर समुंदर में भूडत थी कब हमिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारण कौ अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सुब चिंता लाहे हमारी अवरण सूजा दूजी ठार हार पर्योता द्वारी लेखा छोड़ अलेखा छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी साधु बख्शेंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछ परियो राख लिहो एहो बारी सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसां कुरसां तदरिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोई सबना दा सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठे

जी अंदर जियो सबकी जान ला, सब किस तेरे बस तेरा कर पला, फिर है घर आनंद बजाई।

सावन का सबका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया रे आयत। देव देव फत हे विरद की पैर पंथ की जीत। श्री साहब की सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी दान विसाह दान सदान दान सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन स्नान चौंकिया झंडे उगे चुको जुगे अटल हर

गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सुख हो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाए दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण।

बलहारी कुदरत वस्या तेरे अंत ना जाए लख्या रहा। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर हा। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता।

शब्द चौंकी सोदार रहरास साहेब जी दे पाठ जी की अरदास पुल चुक माफ करनी सिखा पढ़ते सुन दे सरबत लाहे बंद हो मन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी।

पूरे अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा ऐसा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सत नाम।

हाथ दे रखा अपने को, सास सास प्रतिपाले, प्रभ से ओ लाग रहे ओ मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन्न हमारा मीत, रहा मन बिलास पाए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक,

0: आशा महला पहला बार श्लोकानाथ रोगी महले पहले के लिखे ढूंढे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस देवते की ये करतना की बार महला दूजा जे सोचन दोग बेसूर चढ़े हजार एते चानन हो दया गुर बिन को
1: पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तलवाड़ियों सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े ही तन बेच सवा पौड़ी अपने

मुसलमाना शिव शरीर पर पढ़ कर विचार बंदे से जपे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनत्या मन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुणा सो करे संसार चोरा यारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खच ले थाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओ जा के सो तू है।

तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा बरपंडा अंडू जर जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नान जंतु पाए कैसा माले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता।

लख सूरत संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मुथिया कर्म सच्चा नी साण पौड़ी सच्चा साहब एक जिन सचो सच बरताया जिस तू बिद मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु ने सच पाया जिन के हृदय सच बसाया।

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ भी बिखा पोए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किसनार की चे दोस्त जी सब

निस सहज सो भाई दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसमदि नूर अर सोह कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी आसा श्री कबीर जीओ के ते पद अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद।

0: खुदा ये लोह पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमर किया
1: चारे बेर होए सचिया।

0: अपराधी दूनाने में जो हंता मिर्गा है, शीश नवाए क्या थी जाए जारी देख सुते जाहे।
1: मल्ला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाद।

0: ए जनेव जी का है तपन देखत, ना हो टूटे ना मर लगे, ना हो जले ना जाए, तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए। चौंकन मूल आया बे चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां रात दिन से जी नाल, तक बाहों कत्ती है बामन वटे आए, कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए, होए पुराना सटिया भी पर पाई हो, नानक तक न टुटई जे तक होवे जो।
0: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत, दरगह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुक पवे दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना अखी, वे तगा आपे बते बुड़ता गे बरकते ले पार करे ब्याह हो।

0: ना पियावे ओई साध, कूड़ी रास कुड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर।
1: मथे टिका तेर तोती का खाई, हाथ छुरी जगत गुसाई, नील वस्त्र प्यार होवे प्रभान, मले स्थान ले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौंके ऊपर किसे ना जाना, देख के चौंका गड्डी का रूपराय बैठे कूड़िया। मत पिटे वे मत पिटे, अनु साडा फिटे, तन फिटे फेट करे, मन झूठे चुरी परे।
0: ओ नानक सच ते आई है,

पहला मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड, अखी सूतक वेखना, परत्रया परतन रूप, कन्नी सूत कन पहला इतबारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जम पर जाए।